0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, चलो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

तू सो जाए, मैं जागूं, राम करे कहीं ऐसा हो जाए कि मैं जागूं और तुम सो जाए, राम करे कहीं ऐसा हो जाए। मुकेश जी की आवाज और फिल्म मिलन का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने।

धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया। हाँ, धड़कने लगे दिल की तारों की दुनिया, जो तुम मुस्कुरा दो, क्या बात है। धूल का फूल फिल्म से गीत को आप सुने, फिल्म धूल का फूल। हाँ, और गीत के गाने वाले महेंद्र कपूर एंड आशा जी। और अब लता जी के साथ सुनिए मुकेश जी की आवाज में एक गीत।

तैयार हो जा, तैयार हो जा, तू यार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेनहाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus, GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire. अरे अरे अरे अरे सुन सुन सुन सुन वक्ती कर हाँ चली ब्रासा फेस्ट यस फाज़ 1 इज volledig uitverkocht sold out haha हम बोले रेली तो से तो हैव यू नॉट गेन टिकट्स दन इज दिस योर कांस ऑन द अर्ली बर्ड टिकट्स इन फाज़ 2 मोय सीज़न इन फाज़ 2 टू स्कोरन वक्त नीट लंग वंट इन द फॉलोइंग फाज़ गान द टिकट प्राइसेस ओमहोग टू जल्दी कर मौसी चली घूमे चली ब्रासा फेस्ट हां 100 चली ब्रासा फेस्ट बेस्टेल न्यू फिया www.brasafest.nl. Ujala Larehe, the greatest voices of Bollywood. Raga and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaart Theater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagje te zijn. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, उदित नारायण एंड नेहा कक्कड़ से आप सुने युवा उजाला रेडियो।

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ओटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे या बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो

0: उजाला रेडियो पर सुनिए यादगार गीत।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब,

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

साथ पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टरडम और अल्मेर से लड़कन गयाधर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 80 साल की आयु में तख्त ख्यार और रवीन और विजय गयाधर की माँ रोशिता गयाधर पंचू की सास, प्रीति और रैना गयाधर के आजी, रीनिया हरिद्वार की बहन और अजेश बोंदाला पीडिया की फुआ, अम्स्टरडम ओस्टडोर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु, अम्स्टरडम के ओंज लीफ्रावास्टहुस ओस्ट में हो गई है। स्वर्गीय श्री हरी जवाहिर और स्वर्गीय नेल बोंदाला पीडिया के बेटी जो थी जीवित में सूरीनाम और नीदरलैंड में ऑंडरवाइजरेस भी थी। अम्स्टरडम और अल्मेर से लड़कन गयाधर और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शुक्रवार को 80 साल की आयु में तख्त ख्यार और रवीन और विजय गयाधर की माँ रोशिता गयाधर पंचू की सास, प्रीति गयाधर और रैना गयाधर के आजी, रीनिया हरिद्वार की बहन, रजेश बोंदाला पीडिया की फुआ, अम्स्टरडम ओस्टडोर्प की रहने वाली श्रीमती मारी उर्सिला जवाहिर की मृत्यु अम्स्टरडम के ओंज लीफ्रावास्टहुस ओस्ट में हो गई है। स्वर्गीय श्री हरी जवाहिर और स्वर्गीय नेल बोंदाला पीडिया की बेटी थी और जीवित में सूरीनाम और नीदरलैंड में ऑंडरवाइजरेस थी। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आने वाले सोमवार के रात में 7 बजे से 8 बजे तक मांदखाफन फन जीफन तोत आख्तूर Uitvaart Centrum Westgaarde ke Moerdalei, ook meerweg 275 Amsterdam Oostdorp mee. Arthi ke dagkriya aane wale budh ke din mein 2 baje, woensdag aanstaande 2 uur kiye jayenge. Westgaarde Crematorium, ook meerweg 275 Amsterdam Oostdorp mee. Ye soochana hai ki nivaasthaan par baithak nahi kiye jaate hain. सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फ्रजोरखिंग परिवार गयाधर और परिवार जवाहिर के दुख में शामिल है।

0: और अभी उजाला रेडियो का प्रोग्राम में आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवराघा फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवराघा फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein. हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नीलांग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल ना info@ujala.net info@ujala.net

सुन वालों, ये उजाला रेडियो है और उजाला रेडियो के जरिए प्रोग्राम में हम नहमा सुनाने को जा रहे हैं आंस्टांड जादादाग 29 एंड जोंदाग 30 अगस्त को जबरदस्त हंगामेदार फेस्टिवल होने वाला है ब्राजा फेस्ट इंडोर समर एडिशन इंदौर। हाँ तो मोइस सुन रहे हैं भीतर जिया इवेंट सेंटर दनाग में आप सुनने को जा रहे हैं नहमा। इस बार प्रोग्राम में हम ला रहे हैं अफीशा की आवाज में ओ कमवेजक और ब्राजा फेस्ट।

0: you are.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
2: De drukte van vanmiddag is wat afgenomen. Er staat nog 60 kilometer file. Vooral recreatieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaken oponthoud. De langste files staan op de A6, Lelystad richting Jouren bij Emmeloord. 10 minuten vertraging, dat is een nasleep van een ongeluk. A27, Breda richting Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 10 minuten. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland. Voor de grens, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ujana Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने भी बेटा उजाला रेडियो आपके हर कामकाज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन आप उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबिल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

तुझसे मेरा ये जी नहीं भरता, कुछ भी नहीं असर अब करता, मेरा राह तुझसे, मेरी चाह तुझे। फिल्म का नाम है लुका छुपी और गाना का नाम रहा दुनिया। इट इज द स्टेम फ्रॉम निमन मिंदर दान अखिल एंड अडवाणी भानुशाली। Heerlijke Ghana, heerlijke gevarieerde Ghana. Op deze heerlijke dag als vandaag genieten we lekker van de beste Ghana on Ujala Radio. Tujane het toch. Dunya Kamashur, Hindustani Hit Radio. Filmkanaam heet Mitron, uit het jaar 2018. Organakanaam heet Kamaria.

0: माना के हम यार नहीं लेते हैं के प्यार नहीं। खूबसूरत गाना हीर बाय उजाला रेडियो। फिल्म का नाम है मेरे प्यारे बिंदु इन द हॉफ्ट रोल आयुष्मान खुराना सामन मेट परिणीति चोपड़ा गब्रख्त इन द यार 2017। उभरते हैं ये प्रोग्राम खूबसूरत गीत के साथ इस बार फिल्म नमस्ते इंग्लैंड से।
1: तू ही बता कौन तू
0: है। दिस इज हिम फ्रॉम अतीफ असलम। अतीफ असलम ऑन द वोकल्स इन दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

तू ही बता कौन तू है मेरा, कब से तू दिल में रहता है क्या पता। खूबसूरत सॉन्ग, खूबसूरत गाना, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए, हर पल रहूं मैं सिर्फ तेरे लिए। ja, het is de geweldige stem van niemand minder dan Atif Aslam.

वैसी बहुत रोते हैं, तू पार्टी कराइयो कोई डेट चल चले तो तू ढाई समझना, पर जो पकड़े तेरा हाथ उसे भाई समझना, पर कई बार हाथ दे के हाथों की लकीरें ले जाते हैं लोग, तब हाथों की सफाई समझना। हेटर

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो.

के घर पे आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

अभी तक उजाला रेडियो का प्रोग्राम को आप सुन रहे हो। कोई भी जानकारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप एडमिनिस्ट्रेंसी पर तार करें 020 409 9807।

सुरीली अखियों वाले फिल्म वीर से, हाँ फिल्म वीर से गीत को अभी आप सुने।

0: फिल्म का नाम मरते दम तक गीत के गाने वाले मोहम्मद अजीज एंड अनुराधा पौडवाल।
1: मोहब्बत है क्या चीज, कुछ तो कहो, कहो ना, बोलो।

एंड मोहब्बत है क्या चीज, आशा जी एंड सुरेश वरकर से आप सुने। फिल्म हिफाजत का गीत है।

तुझको दी सूरत परीसी, दिल तुम्हें नहीं दिया। पंकज उदास की आवाज और फिल्म का नाम घर में राम गली में शाम, उजाला रेडियो पर।

इस गीत को अभी हम आपको पूरा सुना देंगे जरूर। अगर गीत पसंद है तो सुनते रहना। उससे पहले एक और गीत पेश है।

ब्राह्मा चली पूर्वा हो रामा, महेश की आवाज में गीत को आप सुने। अब उसी गीत को हम ला रहे हैं जो अभी आपको एक लाइन हम सुनाए थे, मुकेश जी की आवाज में पेश है।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार, ये है यू आर उजाला रेडियो। स्टूडियो में कुछ देर तक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ लेकर कुछ मिले जुले संगीत। सबसे पहला सिलेक्शन है लैला मैं लैला।

हाय हाय क्या बात है लैला लैला तू लैला। सबसे पहला सिलेक्शन हमारा प्रोग्राम में पेश की गई है। हर एक को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे स्टूडियो से। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम और काज के वास्ते आप डायल कर सकते हैं एम्स्टर्डम शहर में 0204090807 पर 02-409-08-07 पर। मिले जुले संगीत में आइए एक गजल सुनते हैं। इस बार है जगजीत सिंह की आवाज़।

मिले जुले संगीत में हम आपको अब एक गोल्डन ओल्डी सिलेक्शन सुनाने वाले हैं। जब से हो गई मैं यंग, दिल करने लगा है तंग, क्या बात है आशा जी की आवाज़।

0: और तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैंने तो नहीं किया, शायद आपने किया है। तुमने किसी से प्यार किया?
1: किसी से कभी प्यार

0: किया है।
1: अरे बोलो ना, तुमने किसी से कभी प्यार किया है? सिलेक्शन पेश की गई हमारे सभी श्रोताओं के वास्ते, हाँ जी आपके वास्ते भी। युवाओं का पैगाम उजाला रेडियो आप सुन रहे हैं। और अब जानो मेरी जान मैं तुझ पे कुर्बान, फिल्म का नाम शान।

बीते हुए दिनों का हॉट सॉन्ग आपकी खिदमत में अर्ज है. ईमानदार नामक फिल्म से आइए सुनते हैं. और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम छुपा रखा है.

द रॉकिंग सेंसेशन यू आर उजाला रेडियो के जरिए आप ये सिलेक्शन सुने हैं और इस दिल में किया रखा है तेरा ही नाम छुपा रखा है। नगमा हम आपको सुनाने वाले हैं भूपिंदर की आवाज। लीजिए सिलेक्शन हम पेश करें हमारे सभी सुनने वालों के वास्ते।

0: सैया दिल में आना रे और आके फिर न जाना रे। मोये मार सैया की तो आदत है आकर के फिर चले जाने की। दिस रामदेव चैतो अब उजाला रेडियो का प्रोग्राम में हिस्सा ले रहा है, सुनिए।
1: सुनावे लागे एक सुंदर सुगंध।

एक सुंदर सुगनवा सुनावे लागे। रामदेव चैतू की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो है ये। मोई लगे तो

और देखे भी तो क्या देखे तुम्हारे सिवा, सोचे भी तो क्या सोचे तुम्हारे बिना। लता जी के साथ आप सुने उदित नारायण को, फिल्म फर्ज का गीत, और ये उजाला रेडियो है।

एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है। हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए।

0: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujjala Radio.
1: Dokter ji, please, ek baat sunti jaiye. Bas ek baat, dokter saab.
2: Kahiye.
1: Wo jo aapne mere liye dua ki thi na, zarur sacche dil se ki hogi. Bhagwan ne sun li hai aur mujhe ho gaya hai.
2: Kya ho gaya hai?
1: Mujhe pyar ho gaya hai.
2: Achha, mubarak ho.
1: Lekin aapne ye to pucha hi nahi, kisse?
2: अरे हाँ, ये तो मैं पूछने भूल गई। किससे?
1: जी वो
2: बोली बोली कौन है वो खुशनसीब?
1: जी वो खुशनसीब आप ही हैं।
2: ओह थैंक यू वेरी मच। माफ करना, मुझे कोई भूख नहीं।
1: सुनिए, ये भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है।
3: ओए चान जी।

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको, इसे बताते ओ तुम्हें, तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।